0: 용가이비 네 빠마 심쿵데 비시데 아이나네 누빠세 사히따라 헤르빤 민나드네네 이사마리레라바 마마만인 헤이세 염식이 마베만인 헤마베마 헤마나
1: 사히따라 헤나빠 민나가비 시부 빰디 하이드나 나망가나 나우누비 니빠게 세바토바 헤비 럭스미 마푸실레네 고헤 사피키 야드로 나빰다 ओ क्वीन ले रखले हाय बगी मतिक ना माय सु पान दे हे
0: हे चंगन बी अफाव बी अतोम बी मी गिन पामन बी
1: हायो अतोम बी हाय बनती ए अरे पी हाय बने अरे पी अहेन बी नुसी तोम बी नुसी तोम बी
0: अहि गिन पासे नत्र बदी निपा अमत ले जद्र ब्रो मतु मसा ले रब निपा फारी बी नंगबु नु पी नि हाय रसे नि हे न खोई से नु पी खुनाई सिबु सेन थन बी महि इन हे महि
1: नु पी गे रे बी सती फुजेंग जबबो

नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त थोकचोम गीता।

दोस्तों आज है बुधवार और हमें मालूम है कि हमारे श्रोता अपने चहेते कार्यक्रम आपकी फरमाइश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जानने के लिए उत्सुक हैं कि हम कौन कौन से फरमाइशी गीतों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहला फरमाइशी गीत। ओय नाम चंद्रमणि क्वाकेथिल थनाउजम लेकाई से है। इन्होंने पसंद किया है जीवल थे फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है एसडी बर्मन।

दोस्तों अब सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत फिल्म रोटी से। इस गीत में आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले दोस्तों के नाम है गायखोन खुलेन मनिंगलिकाई से के एच ताटोन, कोरंगई मयालिकाई से सोयबम धनजोय चाउबा डोली और फीस। तो सुनते हैं ये गीत।

खोंगजुम सापम से समरेंद्र हेक्रुजम, सिंजमई से रिपा अकोइजम और क्वाकेथिल कोंगजंग लेकाई से सनासम गिब्सन, पोरेंगानबी, ग्लानिया, इनुंगानबी, लंचेनबी। आप सबकी पसंद पर अब सुनते हैं दूसरा आदमी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार है राजेश रोशन और संगीतकार है, माफ़ कीजिएगा, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है राजेश रोशन।

दोस्तों अब सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत फिल्म आन मिलो सजना से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद करने वाले दोस्तों के नाम है खुराई निंगथोबुंग, लेकाई से थोकचोम तोम्बा, राजू, रमेश, प्रेमजीत और राजेश। पुरमपात चुथेक से रणबीर और वांखई से तम्फा सना आर के। तो सुनते हैं ये गीत।

अब सुनते हैं दिलीप सेन और समीर सेन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म जिद्दी से ये गीत, हरिहरन और चित्रा के युगल स्वर में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और पसंद करने वाले दोस्तों के नाम हैं हेंगांग मयालिकाई से वाकम्बम जोन, बिजोयसना, अनीता, दिनेश और सोनिया। तो सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है जिद्दी।

दोस्तों, आपकी फरमाइश का आखिरी पायदान पर सुनते हैं सच का बोलबाला फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। बोल अमित खन्ना के हैं और संगीत बप्पी लहरी का। पसंद करने वाले दोस्तों के नाम हैं अहलुब अवंगलेकाई से लाइश्रम नेत्रजीत गंभीनी रोशिया रजिया रोमिता प्रिंसी किल्टन और विद्या रानी। तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का फरमाइशी गीत अब यहीं समाप्त होता है। हमारा जो नंबर है फरमाइशी गीत का, नोट कर लीजिए, 9863239345। एक बार फिर से 9863239345। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

गीत माला की थोरम ताबिरी ताबिरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संघाई चैनल देखनी हौजी पुफम पुजरकली अरीब मतम से खुदोल खुदोल की हम ताबिरसी अहिबम श्याम सिंह की नाइटम खोजल थुबी देवी ना सैरेंब मतम से खुदोल तमजरी ताबिसी

0: पिज़्ज़ा एक कदा एक गयम सवार शुआय बनो हाँ उसे पूरे कदो वाइनो आई आई दिलाए बम मचाने ओह पिज़्ज़ा नंग नहीं बुने पामिस कहीं ना कुमा नंग नहीं बुने पामिस कहीं ना कुमोने ओ नंग नहीं बुने पामिस दी आई बुले बाग मियां मांग शिदा मोरेल जाओ तो मैं मीने ने उड़ने बकाऊरी बना त्रो आई बुले कहीं मियां मांग शिदा कोई ना बकाऊरी बना त्रा ऐ नगों ने कई लान कर गए, ना शिपा उधा ऐ नगों ने करिया काय बक थबक जत कर गए पिजा, जुमे, नंग गए के मत मम्म द नुक्शन रमे, अदुगर नंग ना, अचाव रम पाम तो ना, शेल धूम कर तबु कलक तो ना, लाहिर बम बचाई बु नंग ना मीराई रगत जत की बनत्रो,
1: मंगा

मेरा धागे पूर्णिमा वेरा माले कया तो पशुक्रवा ए मेरा थार दमराल भी पूर्णिमा की थाजा नंगी मेंगल मंगल सेंगों द मुहना उल्लगना नंगी मेंगल मंगल शनाई बो ऐ पुंछी के कोगन रोई दबा काऊंगम रोई दबा पुंछी वारे का याद दबा निंशिंग लगाई ऐ करम न पोता कने नंगे बो मनो वाला कनो नंगे बो वाला कनो

0: 불안한 셈인지.
1: 라이즈기 소셜 웰페어 비방네 싱도나 방토키 바토르 마두다 MLA 싱 십 세크레토리 에머디 커미셔너 싱 바 오피셜 싱 서루 야키 Congress dolna ain leitabal libag uhenna bo hona bagalena ganatantra gi phajaba masak thiyana bo honare haiba maral siraduna ngasi mukhyamantri Yumnam Khemsan yauna Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki makok thongba Kariya Karta Singhna thambal sanglenda wakal mifam satakre wakal mifamaduda BJP gi MLA khara su saru yakhi Congress dolna ain leitabal libag uhenna bo honari ba du khudak da lepu irang thongna ba singanu haibani singba wai sing thaba play card kaya mifamaduda sijinaki ganatantrabu rajniti gi oiba phajada ba thawung singna masak thia na ba hondaroi da bani haina wakal me phamadu ta saru yakiba mukhyamantri Yumnam Khemsan na phungdokhi magna hai Bharatiya Janata Party na samvidhan gi sana kanglon singang na sana pamadi tangtu leita baliba ga mo hena ba daita leiba rajniti gi damak sapsana lebli madugi mamangda Manipur Pradesh Congress Committee ne sintuna Imphal gi Congress bhavan da gi lok bhavan tamna laktuna Rajyapal da memorandum pisankhi memorandum madu Delhi da mahiroi singna sangsin khiba khongjang da police na utkhiba thawang amadi birodhi lusingba Rahul Gandhi bu Delhi police na phajin khiba bu yaning da bu phungtok tuna pisin khibani khongjang du da Congress lusingba Okram Ibobi madi atai MLA sing yauna dolasi ki maroi ba miyoi kya sarb yaduna lok bhavan tamna khongsad du lagla ba matung Rajyapal da wapham mari yauba memorandum madu pisin khibani Wapham Singh adudi Kendra ki Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan Pham Thadoganba Mahiroi Singh ki Punsi Kanabagitamak Sangsat da Warep Lauba Kanglon Sumna Parikhya Singh Pangthoknabu Wapham Khanabamadi Delhi da Sangsin ki ba Mahiroi Singh ki Khongjanga Marilina Police na FIR Paliba Singh Handokba Haibani Singh Wapham Singh Asini Paugi Marakthanna Atinba Break Amma
2: Marup long misil in housing. Adong itamak ano bunungay pagzilama pudo na laksere. Law da taba mayol si pia manakonsin bi utong tin amadi mahit jupi loy na nalainung daleba min na udabatil makal kayabasu amuk tatahat pang amatil hari hidangi. Stanley hidang macal lahum pundo na siyemba ato ba kampani amatan putok triba til hari hidangi. Law sanggam amada Stanley kezi amakak saiba na numit nifu mangani di til makal kayadagi mapung panang ato pang amle. Law mi ikuy mit pang lase. Selsu sang daba til makal kayabasu amuk tatahat pang amba Stanley pangfam thawzal agro Manipur sag
1: Golban Maino Lera. Tabi Riba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini. Kamzong Zila Tengasi Lalobani Singlipa Singna Thuong Ama Amangata Thuong Lamle Masung Gari Ama Mai Thadok Lamle. Kamzong Police Ki Pawna Hai Zila Adugi Nambal Turel Ki Matakta Saba Sahamphung Bloka Kamzong District Headquarters Ka Pauna Haliba Thongadu, Masin Nongalam Daipung, Ani Makhairom Tarakpa Dwaida, Bom Sejin Aduna, Amangata Tholambani. Police Ki Paunai, Laloba Singh Aduna, Bolero Gari Amasu Ngasi Ayupung Nipan Makhairom Tapada, Mai Thadok Lamki. Adumay Namak, Thodok Aduda, Mi Amata, Asokapan Yahudre. Gari Adu, BSNL Gi 4G Network Install Toron Lomotunda, Ukrul Lomda Halakpagi Lambida, Lalobani Singh Basingna, Thong Adugi Manakta Kamlakibani. Police na singleba miyoi sing phana ba akan mathabak paikali adumai namak housing phawba gi oina mipha mipun gi pau leitri Manipur State Commission for Women na National Commission for Women ga khusam natuna Imphal gi DM College Teachers Education da nomagi oiba Yashoda AI haibasida miyam puna khangmina bagi thoramama ngasi pangthokre Thoramadu saru yaraduna Manipur State Commission for Women gi chairperson Thumlip Teningpham Monsang nai Manipur State Commission for Women na awaba tarba madi hingsa mayok naribi nupi singki wakat thengna ba maruiba platform ama oina thabak dauri nupi singki hak amadi makhoi gi ain gi oiba phangbam thokpa sing ningthina khangna ba tongan tongan ba thorom kya commission na leptana pangthok tuna lagli Magnai, Yashoda AI Haiba Thoromasi, National Commission for Women na Nupi Singbu, Artificial Intelligence Samadhi, Digital Gilamda Ningthina Khanganapa Paikat Pakung Thangamani, Ngasi Pangthukliba Thoromasi, Manipuri Giwaina Ahanbani. Ngasi Ki Thoromaduda, Manipur State Commission for Women Gi Member, ASK Sophia, DIPR Gi Additional Director, W. Phajatombi Devi, DM College Teachers Education Gi Principal in Charge, Dr. Anita Kangabam Saruyaki, Technical Session Da Akhang Ahisingda Wangangki. Vidya Bharat Utsa Siksa Sangstan Manipur, Granna, Pranna, Sandhyal Gi, Lambung Taliba United College ki IQAC ka khusam natuna Academic Writing and Collaboration Activities hai bihiram da nomagi oiba jati thaki workshop amanga si pangthokrai United College ki seminar hall da pangthok pathoram aduda Kendra ki hanagi Rajya Mantri Dr. RK Ranjanna athoi ba mithung oikhi इम्फाल ईस्ट जिला की डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस की मेरी मखादा मोधो एंड सनाहनबी मेमोरियल ट्रस्ट पौराबीना मफम अदुगी अकोइबत लेबा लोमीसिंगदा यूरिया हार यंथोख्रे खुंजा सिंगना सरकार की लोयसंग सिंगदा सतुना हार लोबदा खुदोंगसादा बसिंग थेंगबा दुकोना बगेदमक असिगुम थौरांगसी पाइखतपनी हाइरी सांदेल जिला के जाफो बाजार द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सांदेल ना नेशनल वायरल हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की मखादा नोमगी ओइबा आशा अमसुंग अंगनवाडी वर्कर्स सिंग हेपाटाइटिस बी अमसुंग सी करमने थेंगनेगनी अमसुंग ngakthokni haibe ki matang da thorumama ngasi pangthokhre इम्फाल की हॉस्पिटल द लायंग दुन लेरीबा जेलियांगरोंग पुई कांगलुप की अनाबा सिंग द एगी मतेंग पांगनबा की पांदम द हेल्पिंग हैंड्स जेलियांगरोंग पुई चैप्टर ना नोंपोक सजेनबम द लेबा ब्रदरहुड का कुसम दरगा ई दान तोब की थोरमा इम्फाल की रिम्स ब्लड सेंटर लिंग से पांगथोखरे हेल्पिंग हैंड्स जेलियारोंग पुई चैप्टर की कन्वीनर अलान पुना दाइमेई ना थातोरक बचेरोल मनहाई सिंग की जिला सिंग की इम्फाल द लायंग बल लाकपा ना बसिंग द ई वार्ड पे की खुदोंसा तब कया थेंगदरी पे तो कोना बके तम खोंथांग असि लखलकपनी मणिपुर द हौजी ओरि बाय फेबे मसिदा सिंग दिगी लाकपा ना बसिंग ना ई वार्ड पे की खुदोंसा दब थोलप मतम दा इमुंग मनु की मेयो सिंग ना इम्फाल तम ना लाकतो ना ई बिबे मतम दे थेंगदरी ब खुदोंसा दब कया अदु यंग लगा जेलियांग रोंग पुई कांगलुप की तंपाक त लेदुना माई मसिंग तमरिब मदि थबक तोरिब मेयो सिंग ना ई पिबे की थौरांग सि लखलकपनी बिरमंगोल कॉलेज होम बोंगी स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम मा कॉलेज असे की जिम्नासियम होल दंग सि पांथोख्रे थोरमदु दा कॉलेज असे की प्रिंसिपल डॉक्टर के ब्रज कुमार नहाई कॉलेज असे मतम कया की ममांग दगी अवाब कया खांगदुना लागले दुबो गसिदी कॉलेज असिदा तोंगान तोंगान ब डिपार्टमेंट तरामा पन हांगदोतुना माइरोय सिंगदा ज्ञान लोसिंग निथिनि पिबंगमले माइरोय सिंगना नेसा दगी लापथोंग लैनाबा ओजा गुरु मसक खंगन सनाबा खंगनखी इंडिया मेट डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर हाईरी राइज असे की जिला पुनमक्ता गसिदिगी हौरगा था असे की कुंतरुक फावबा अखाक अराव याउना नोंसुरबा याई असम इसाउ मरी लेना मई कुंथ्रामथो लेखिद्रे राइज असे की जिला तरह तरुक्त हौजिक इसाउ की अवाब मयोगनरी सरकार की पावना है राइज असे की खुंगंग चनीपान हूंबद्रा निथोई की मई लाख मंगा लिसिंग हूंफूमरी इसाउ की अवाब मयोगनरी मई मरों थाब लम हेक्टर लिसिंग कुनबरी हेन इसिंग थुमजिनख्रे कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला सिंह इसिंग इसाउ असिन मई लिसिंग मरी हेन अवाब मयोगनरी सरकार ने मी कनब तेंबा की पोलम सिंग पी की थबक चथरी रिलीफ कैंप हूद्रा माथो हांगदोना मई लाख अमे हेन तेंबा पीरी एन डी आर एफ एस डी आर एफ फायर इमरजेंसी सर्विसेस के लोन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मी कनब मी थांगदोप की थबक चथरी आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबीरी संसद की सभा अनिम की मीफम विरोधी सिंह सरांगना थोनबदगी नोम की ओर यथोख्रे लोकसभा मीफम अनेरक हन्ना यैथोक लुरबा मतुंग नुंथिल पुंग अनिदा मीफम अमुक हौरकपदा विरोधी सदस्य सिंगना नीट पेपर लीक ओइबगी मतांगदा खोलाव कयामरुम लाउब थे हौरखी सरांगबा मरकता सभाना तृणमूल कांग्रेस की एमपी कल्याण बेंदरजीबु मखाताबा लेमोरीबा मीफम यहोंदनबा वारेप वॉइस बोता पास दौखी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कृष्ण प्रसाद पेनिटी नहाय श्री कल्याण बेंदरजीना नुपी सदस्य सिंगदा आतमनना ताब नुंगाइतब वही वता कया मुरुम सिजनदुन वा गांखी वाफम अदु अध्यक्ष यौरखी मसी संसद के नीति नियम थुगाइबनि हाइनसु महागना मराल सिखी मदुगी ममांगदा मिफम हे खौरोपगा अध्यक्ष ओम बिरलाना वहांग पाखुंगी मतम लखन बहोनखी अदुमोइनमग विरोधी सदस्य सिंगना नीट पेपर लीक ओइबा मसुंग माइरोय सिंगी खोंगजंगी मतांगदा वाफम कया पुखलखी अध्यक्ष ओम बिरलाना मिफम नीति ने सथब यहानबा विरोधी सदस्य सिंगदा अपील तौखी अदुमोइनमग विरोधी सदस्य सिंगना मखाताना मखोइकी वाफम सिंग पुखतुना सरांगना बथोनखी मदुना मरम ओइरगा सभागी मिफम नुमिलुंग बफाबु यैथोखी नुमिलुंग मुदा मिफम अमु होरपदसु विरोधी सिंगना हानगी वाफम सिंग अमुखना पुखतुना सरांगना बथोनखी कांग्रेस की केसी भेनुगोपालमदि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादवना माइरोय सिंगी खोंजंग अदुगी मतांग दे पुखलखी राइज सभादसु विरोधी सदस्य सिंगना सब मानब वाफम द सरांगना बथोनबदगी सभागी मिफम हंजिन हंजिन यैथोखी डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नहाय नीट पेपर लीक ओइबगी वाथोक सभाद निथिना खननब सरकार न होनरी मसिदा विरोधी सदस्य सिंगना मतेंग पांगबगी तंगाई फदबले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजु नहाय सभाद वाथोक असी निथिना खनगदबने दबो विरोधी सदस्य सिंगना मखैगु ओइबा तोंगान वाफम पुखलपना मरम ओइदुना खनब याहंद्रे हानदि कांग्रेस न वाथोक असी सभाद निथिना खननब पुखलमबनी हौजिक्ति कांग्रेस न मधु खनहंदनब होनरे हाइनसु महागना कांग्रेस पु मराल सिखी

0: अदम थोरम ताबिर बसे मेघसा मोहम दस्मी मार सनुक्सरी भ आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल दगनी हौजे मुक्ताबिर से मतंग वफम द नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे आई ब अहोंग सांगबम मुबी सीनियर जर्नलिस्ट
1: मालेमद लेरिब लेबा कुदिंगी तोंगान तोंगान ब फिराल सिंग लेने मागी मागी लेनरिब फिराल सिंग की मसक मौंग मचु खेना बगुम फिराल सिंग अदुगी वहान थोक सिंग सु खेने इंडिया की ओइना गेरुवा सेफ्रोन अंगौबा वाइट अमदी असंगबा ग्रीन मचुना फाइना फाइना लांगबा अदुगा मयाई द अशोक चक्र लेतेंगबा मचु अहुंगी ट्राई कलर फिराल सिजिने मचु अहुंगी फिराल असी सिजिनब हौद्रिंगाई दा तोंगान तोंगानब मचु अमसुंग सओंग मानदब फिराल सिंग सिजिनरमी हौजिक सिजिनरिब फिराल असी लेबाक असिना निंगतंब फंगदब चयोल खरत ngairब मतमद कुमजा लिसिंग म चमाप निफु तरे की जुलाई कुनिथोय दा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना मयाई तांगब लौदुना पांगथोखिब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गी मिफंद अयाब पीखिबनी असिगुम नुमित असिबो निंगसिंगदुना चही खुदिंगे जुलाई कुनिथोयबु नेशनल फ्लैग एडॉप्शन नत्रगा तिरंगा एडॉप्शन डे हाइदुना थौरम पांगथोखनरी मचु अहुंगी फिराल असिगी ममांगद लैबाग असिना निंग तंबगी इहौ सथरिंगाइद तोंगान तोंगानब फिराल कया सिजिनरमी निंगथौ पानब सक्सु कांगलु फुरुप लाइनिंग लोल ना चनेबी खेनब कया लैब लैबाग मचा कयाना पुनछिल्लग सेंखिब लैबाग असिगी तोंगान तोंगानब मफम छिंगद मागी मागी ओइब फिराल सिंग लैनरमी अदुबो सुपनतगी फिराल अमखक्तना लैबाग असिगी महुत छिनबगी वाफम अमा कुमजा लिसिंग अमग चनिपान यांखै तरेकी सिफाई लालहौ मतुंगद थोलगी कुमजा लिसिंग अमा चमापन सुपना मंगादा बेंगोलबु अनी थोकना थुगाइरप मतमद लैबाग असिद लैरिबा तोंगान तोंगान बकांगलु फुरुप जात कुचुगी खेनब कयागी महुत छिनब याब फिराल पुथोपगी वाखलोन हेना चेसिलखि निंगतम इहौ मनुंगद बन्दे मातरम फिराल हाइबा अमा सिजिनरमी ख्वाई की मतक्ता असंगब मचुदा अंगौब थंबाल निपाल हापा

0: हेलो, गुड इवनिंग मणिपुर की थोरबनी। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग सर।
0: मिंग गले फोन खाना तंग थम यो।
1: फोन तंग भी सर क्राइ ओन में कई दिन लाइफ सब मेरा नहीं सर।
0: हाँ याम नुआई जे इंगसी कॉल तो भी तूने सर याम यूरोप पा कर्म बा फिल्म की कर्म इसे ही तासिक है।
1: सर नसी जी ओलंग था जी वांग में तस्वीर है बक्सम दो दिन की। समरा पुंज ना पर समरा अमन अरबन जमुना अली

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग सर.
0: मिंगले फॉर्म हाँ ना उतने थम्बियो.
1: फोन तो रही भाई कई भी कम कम खा ले खाई देखिए अबे थो
0: अबे थोए कई भी रो मैं कई सी भोजी सी बोलो वो सिंगू मैं जी बुक माइंड तो भी रीगे
1: सर नों जब मकान जा भाई कदर लो पान लो किसने रे
0: होजी से कई भी मैं कई की नदी है तुम्हारे लोई ना मुझे लोशन मिला अब लो वो सिंगू मुझे कमाई तो भी रे सेम मसाला हुन में लोई लोशन रे तुम चा हे अब लोनमी लौसीम तुम नौसी खर दुना कितना थेबस योरखीबना लौसीजे थोड़ा कायब पीदर कई मैके लोनम लौसे हूनबीरब नत्र चक चाब्रो नुमदांगे हजिक फोन
1: लाइबर
0: खाऊदना फोन से फंगदोखरे कर्म फिल्म की कर्म इसे ताथोक नहीं सिंग ऐसी दे
1: नंग तुम बोलने लम दे की दिनेस का पप्पानी का तप्पा नंग आई
0: जी नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग नंग
1: नंग
0: नंग नंग नंग नंग नंग नंग नाइजर नौ मौनी फिल्म से दिनेश आर के नंदेश्वरी खुंजेल ब्रोजेंदो वहेंचना सैरेंगली लोनना गोपी सैरंगली इसे खदल तमजरी तमीन से

से सिगलोने ना ताक गसगी मणिपुर फिल्म स्टेशन दुक्षबा लुसिनजरी गसगी लखो सगे फिल्म सिंह दी कृष्णा अला जीसस फिल्म सिदगी खुन जोय कुमार खुंजल द सनातो नि थौजना सेरिंग बुलोना खुन जोय कुमार मसमंगना सेरांग बिसैनी अनिशु बिसै लखो सखिबा तोरे फिल्म सिदगी रणबीर थौना की खुंजल द खाइदेम इमोना सेरिंग लिबुलोना रणबीर थौना मसमंगना सेरांग बिसैनी अहम सुबह से द लोकत सकीफ फिल्म मैजाक फिल्म से दगे लाइसम में मध्य भी मध्य लाइ में बंक लाइसम में मध्य भी कुंजल द लाइ में बंक सरमना सेरिंग लोईना आयबम सैम सिंह ना सेरांग भी सेनी मरी सुबह से द लोकत सकीफ फिल्म नोंगाल बसु थावली मनम फिल्म से दगे मायबम रोशि बिनाई कुंजल द मोरांग थेम इनाउना सेरिंग बुलोईना सगोल सेम तेजेंदन सेरांग भी सेनी मंगा सुबह से उन लोगों से कि वह फिल्म हंगा मरु पोखाई भी फिल्म से देगी हुई ड्रोम ना हुई कुंजल द हीरोजित नौरी बम ना सेरिंग बलोय ना सूरजित ना सेरांग भाई सैनी आकाशवाणी फल हाउसेक नमितांगी पुंग तरा तारे संदूक चली गेट

बिल्कुल हम आ चुके हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, हर्ष श्रृंगार और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। '92 में आई फिल्म दीवाना से आपने ये गीत सुना, ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर फिल्माया ये गीत। समीर का लिखा ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। कहते हैं कि तेरी बातों में जादू सा लगता है, तेरी बातों में जादू सा लगता है, तेरे साथ मौसम का रंग बदलता है। चलो मोहब्बत के साए में खो जाए, क्यों ना इस प्यार भरी मस्ती में साथ में भीग

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल आप रोइए मत, हंसते रहिए, क्योंकि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर श्रृंगार। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया ये गीत आपने सुना अभिजीत की आवाज में, आनंद मिलिंद का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। कहते हैं कि जब प्यार किसी से होता है तो हर दर्द भी मीठा लगता है, हर लम्हा उसकी यादों में कटता है और हर सपना बस उसी का लगता है।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझो में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
4: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
3: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has earmarked nearly 40,000 crore rupees for the scientific closure of abandoned coal mines with a target of closing over 147 identified coal mines by 2027-28. Addressing the release of India's first annual report on scientific mine closure titled Aroh in New Delhi, Mr. Reddy said the government no longer views mine closure as the end of mining activity, but sees it as the beginning of new opportunities for communities and the environment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Canadian counterpart Anita Anand this afternoon on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Huda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And that is the end of this news bulletin.
5: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: this is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन सुषमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है
2: धन्यवाद अमित
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा
0: Thank you, Amit and Sushma. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices continue downward trend. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी. Sensex 700 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई.
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell over 1% and the small-cap 100 index dipped over 1.5%.
1: Sensex pack की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इंफोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
0: ब्रॉड बेस्ड सेलिंग वाज ऑब्जर्वड इन सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसए. एफएमसीजी इमर्ज्ड एज द सोल गेनर राइजिंग 0.4% व्हाइल ऑल अदर सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जिस जब बाजार कहीं ना कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया.
2: बिल्कुल,
1: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा. हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हावी रही और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया.
2: देखिए, ये जो आजकल के दो तीन दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं. लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है. हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी ना किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए. तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे. और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे. लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है. तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है. तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं. दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे. खैर अभी नहीं, उन्होंने दो साल की ये पीरियड दिया है कि दो साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे. तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है.
1: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमरीका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की भी बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
2: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहाँ भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है फार्मास्यूटिकल्स का. और जो मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देख रहा है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, और खासकर जेनेरिक दवाइयों के लिए. ये जो बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि 2 साल के बाद ये होगा, इसको खैर हम थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद भी वो 100% टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर हाँ हमारी उद्योग के ऊपर तो होगा, लेकिन अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर हमारा देश है. और जेनेरिक दवाइयाँ, ये जो हमारी भारतीय दवाइयाँ जो हैं, वो अमेरिका में बहुत कंज्यूम की जाती हैं, मतलब बहुत खरीदी जाती हैं. और अगर इनकी आप टैरिफ लगाएंगे तो इनके जो दाम हैं वो बढ़ जाएंगे. वैसे भी जो दवाइयां अमेरिका में, उनकी जो उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन मेडिसिन्स. कई लोग जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, यहाँ आके दवाइयाँ खरीदते हैं और वहाँ वापस चले जाते हैं. तो ये हम थ्रेट समझ सकते हैं, और लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को इसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा.
0: राइट. So, a small question again, starting with pharma and the announcement over now. It's 2 years in the future.
2: Yes.
0: As an offing. We also know that the past history of comments that are made

0: said that yes, there will be a slight decline in fuel efficiency, and that is not a great deal, but there will be some slight decline, but there will be no damage to the car. Now, there is a great deal of talk about damage to the engine, but you know, according to automobile experts, according to the automobile industry, this is not so. And as has been pointed out by the petroleum minister himself, that this ethanol blends are being used by Formula One cars in their racing cars, because they say there's a less of what they call a knock-on effect. Now, I'm not a technical person, but this is what they say. So it's preferred there. So therefore, the government is trying. This is one of the ways.
1: Right.
0: And you know, we have to see what
1: oil was the flavor of the last question. Look at the global crude oil prices. They climbed nearly 4% today. The surge was led by growing concerns about supply disruptions triggered by escalating hostilities between the US and Iran. Brent crude was trading almost 3.8% up at $94 and 44 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $87 and 28 cents per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 1.2% up at 1,45,350 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,25,420 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 1.2% की बढ़त से 1,44,618 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 0.6% की मजबूती से 2,25,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. सुषमा, संक्षेप में, जो अभी तेल की कीमतों का जो दबाव है
0: जी,
2: वो किस तरह से आपको नजर आता है, और क्या सोना चांदी की जो जो भाव हैं वो भी कहीं इससे कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, या फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉलर और रुपए का जो संबंध है, क्योंकि आज भी रुपए में हल्की सी कमजोरी आई है, वो इसको दिक्कत करेगी.
0: ये आपका सवाल बहुत लंबा है, ये संक्षेप में नहीं हो सकता. मैं सिर्फ ये कह सकती है कि तेल के जो दाम है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन खुल गया तो फिर वो एकदम नीचे आ जाएंगे. उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है. और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है, और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में, तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे.
2: सुषमा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा वंस अगेन. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड. सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नमस्कार.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसको आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन में, और सबसे पहला गीत जो आपने सुना वो है अनजाना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन

और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही. अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार. बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अनुराग जैन वर्ष 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 11:12:14। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

न जाने तेरे छूने से मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे तेरे दिल की धड़कन मेरे दिल में कोई गजल गा रही हो।

ये रातें कितनी हसीन हैं, ये रातें कितनी हसीन हैं जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुझे तुमसे मिलने वाले हसीन ख्वाबों का तोहफा जो देती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों समय हुआ है 12:33 और ये हुआ 34 और 1 सेकंड। मैं हूं जो आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है निशिकंधा।

इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है, इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है। अजीब दस्तूर है इश्क का, तुमसे गिला भी है और तुम्ही पर ये प्यार भी आया है।

0: दोस्तों, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। एक बजकर 10 मिनट पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। होगी, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे इस चैंपियनशिप के मुख्य दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एपे खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government has prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
4: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 17 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मौसम में आज यूं ही मदहोशी नहीं छाई है, मौसम में आज यूं ही नहीं मदहोशी छाई है, सुना है आज वो मेरे शहर में आई है।

मंजिल की भला चाहत किसे है अब, मंजिल की भला चाहत किसे है अब, तुम मिल गए तो यकीन मानो ये सफर मुकम्मल हो गया।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं, दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं जब हम सिमट कर तेरे आगोश में आते हैं।

इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, और तुम्हारे साथ एक नया आशियां बसाने का दिल करता है।

जुदा हो गए हम क्योंकि जमाने को हमारा मिलना नहीं था मंजूर, पर रूह से रूह का रिश्ता आज भी शायद उतना ही गहरा है।

करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, तेरी आंखों में डूबकर मैं अपने सारे गम भूल सकूं।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया. इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है. लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है. संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है. इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में आसियान सचिवालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है. भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
4: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honourable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
3: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. In Sikkim, multiple agencies are working round the clock to rescue people trapped inside the NHPC tunnel at Samardong in Namche district. However, low visibility and methane gas leakage have hampered efforts to retrieve the trapped bodies. Eight bodies are lying about 2 kilometers from the mouth of the tunnel. So far, 13 bodies have been recovered, while at least 25 people are feared trapped inside the tunnel. Meanwhile, the Sikkim government has handed over the mortal remains of the deceased to their families. The government has said it has not received any widespread or substantiated complaints about vehicle performance due to the use of E20 petrol. In a written reply to the Rajya Sabha, Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Suresh Gopi has said extensive laboratory studies, field trials and real-world experience have found no widespread adverse impact of E20 fuel on vehicle performance. He added that E15 plus blended petrol has been in use across the country for over 3.5 years, while E19 to E20 fuel has been used for more than 2.5 years. President of North Macedonia, Gordana Siljanovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of the world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent Subhashree Mahapatra in Skopje, Ms. Davkova said she has always been impressed by India's rich history and spirituality. She added that she was deeply impressed after meeting President Draupadi Murmu and felt that women have the potential to bring about change in the world. Earlier, President Murmu unveiled a bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje. High Commissioner of India to Kenya, Dr. Adarsh Waika, has handed over the first tranche of 4.5 tons of medical supplies for strengthening Kenya's preparedness for prevention of Ebola public health emergency to Cabinet Secretary for Health, Aden Duale in Nairobi. The medical assistance comprises PPE kits, sample transportation kits, infrared thermometers, face shields, heavy-duty protective boots, and other infection prevention materials. India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra for today. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, Karnataka, Odisha and Rajasthan. In the China Open Badminton Tournament in Changzhou, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have advanced to the singles pre-quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमय का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ जैसे कि मैंने अभी बताया रात सुरमय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, तू भी बेकरार है मेरी तरह, ये मैं नहीं तेरी आंखें बयां करती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ अंजू. लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं. लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं. कैसे कहें हम तुझे कि हम तुझे खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं.

दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा। दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा। जीते जी न भूल पाएंगे तुम्हें, चाहे बदल जाए ये जहां सा।

दोस्त अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 3:10 पर भारती रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर मुझे अनुमति दीजिए जल्द मिलूंगी आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर शुभ रात्रि नमस्ते

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 खेलों को शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Ashish Abraham. PM Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held meeting with the Foreign Affairs Minister of the Republic of Panama, Javier Eduardo Martinez Arca Vasquez, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said during their meeting they held productive discussions on deepening the India-Panama partnership across trade, investment, logistics, digital cooperation and business-to-business engagement. The minister said they also explored ways to improve market access, unlock new opportunities for bilateral trade and leverage India's digital public infrastructure, including UPI. Indian Navy has commissioned INS Malwan, the second indigenously designed and built Mahi-class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka. The Ministry of Defence said the vessel is equipped for underwater surveillance, anti-submarine warfare operations, low-intensity maritime operations and mine warfare capabilities. The Ministry added that the ship will strengthen coastal defence, littoral security and maritime domain awareness. With over 80% indigenous content, INS Malwan reinforces the vision of Atmanirbhar Bharat. The commissioning ceremony was presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsyan and other senior officials. United States has condemned Iran-backed Yemen-based Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio said any move restricting shipping through the Red Sea would be problematic, similar to concerns surrounding the Strait of Hormuz. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 1 Alvi Farhan of Indonesia by 21-17, 5-21, 21-17 to reach the round of 16. In another round of 32 match last evening, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And that is the end of this news bulletin.

कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई खूबसूरत दुआ पूरी हो गई हो। उनकी मुस्कान हर पल को यादगार बना देती है।

शकुनों की आवाज नहीं होता और जब भी एक दूसरे को पहचान मिल जाती है तो सच्चा प्यार हमेशा साथ होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार की हर आहट दिल में नई उमंग जगा देती है। प्यार की मधुर धुन जीवन को खुशियों से भर देती है।

जब किसी के लिए दिल में सच्चा अपनापन हो तो उसका नाम हर दुआ और हर मुस्कान में बस जाता है। और समय कह रहा है कि अब आपसे मैं अनुमति ले लूं 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा उसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और ये गर्व की बात है कि स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता शुभ्रसी महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले से ही प्रभावित थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तर मैसिडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरिड झील का भी दौरा करेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएलो को सौंपी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security.

एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो गया है 4:11 और 40 सेकेंड। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अंदाज अपना अपना फिल्म के इस गीत के साथ, जिस गीत को अपनी आवाज से सजाया है विकी मेहता ने।

अभी आपने गीत सुना विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी की आवाज में। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और अगला गीत सुनते हैं फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म संगीत से अनुराधा पोटवाल और पंकज उदास की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार संतोष आनंद।

इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि मैं जल्द लौट के आऊंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक ले रही हूँ आपसे अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसद टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। इस कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरीड झील का भी दौरा करेंगी। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमरीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. Dr. Jaishankar also interacted with the ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn in Manila yesterday. President of North Macedonia, Gordana Sijanovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of the world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, Ms. Davkova said she has always been impressed by India's rich history and spirituality. She added that she was deeply impressed after meeting President Draupadi Murmu and felt that women have the potential to bring change in the world. President Murmu is on a historic state visit to North Macedonia. Today is National Broadcasting Day. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland from today. The Games, which will continue until the 2nd of next month, will see athletes from 74 nations compete across 10 sports at 4 venues. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will represent India at the Games. India is sending a 125-member contingent, including para-athletes. India had won 61 medals in the previous edition held in Birmingham in 2022. Indian men's cricket team will play Zimbabwe in the first of the three-match T20 international series today at Harare. The match is scheduled to begin at 4:30 p.m. Indian Standard Time. Shreyas Iyer-led India will play the second T20 on Saturday and the third match on Sunday at the same venue. India holds

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम बोर सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।